0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सुन रहे हो अपना फेवरेट शो और आज बात हो रही है 90s की गर्मी की, जो कि सिर्फ गर्मी नहीं थी, एक इमोशंस थी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संडे। में हम बात करते हैं 90s वाले शो में 90s की।
1: वो बातें 90s की बातें
0: 90s की बातें वितार जी अदनान ऑन MGM 90.8 FM। जैसे स्कूल का आखिरी पेपर खत्म होता था, बस एक ही सवाल, मम्मी नानी के घर कब जाना है। और फिर वो ट्रेन का सफर या फिर बस का सफर, स्टील के डब्बे में पूरी सब्जी और विंडो सीट के लिए लड़ाई। नानी के घर पहुंचते ही एसी नहीं था, लेकिन हवा में एक अलग ही ठंडक होती थी। सुबह उठते ही नानी का प्यार भरा डायलॉग, उठ बेटा दूध पी ले, और हम 5 मिनट और कहते कहते 10 मिनट 15 मिनट सो लेते थे। दिन भर क्या सीन था पता है? गली क्रिकेट, लूडो, कैरम, और शाम को टेरिस पर चारपाई, ऊपर आसमान नीचे, फैमिली एक साथ बैठकर खाना खाती थी, आम रस खाती थी। नाना आम लेकर आते थे, उसका रस वगैरह बनता था, और पूरे कजन्स एक साथ आते थे, और रात में नानी की कहानियां सुनाना, जिसमें आधा टाइम हम सो जाते थे, पर फिर भी कहते थे एक और कहानी सुनाओ नानी। सच में यार, वो गर्मी नहीं थी, वो लाइफ का सबसे सुकून भरा वर्जन था। अगर आप भी नानी के घर वाली गर्मी मिस करते हो तो एक स्माइल जरूर पास कीजिएगा, क्योंकि यादें कभी पुरानी नहीं होती है। और भी बातें होगी इस पर कुछ ही देर में, तब तक स्टे ट्यून।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं।
0: 90s की बातें वितार जी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: हेलो दोस्तों, 90s की गर्मी याद है ना आपको, जब हॉलीडेज होमवर्क से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती थी। आज कहाँ खेलने जाना है, यही एक सवाल होता था। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, नानी का घर।
1: वो बातें 90s की बातें,
2: 90s की बातें वितार जी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
0: जहाँ कोई रूल्स नहीं थे, जहाँ कोई सोने का टाइम नहीं था, बस फ्रीडम ही फ्रीडम थी। सुबह 8 बजे तक कोई उठाता नहीं था, और जब उठते थे तो सीधा आम का रस या रोटी शक्कर, और फिर स्टार्ट होता था मिशन बाहर निकलना। ना सनस्क्रीन, ना बॉटल, ना टेंशन, सिर्फ एक ही रूल, जब भूख लग गए तब घर वापस।

0: दोस्तों आज एक सवाल है आपसे, आखिरी बार आपने बिना सोचे बिना स्ट्रेस के कब एंजॉय किया था?
1: वो बातें 90s की बातें,
2: 90s की बातें वितार जी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
0: बड़ा सवाल है ना, आप सुन रहे हो 90s वाला शो आरजे अदनान के साथ। 90s में जवाब सिंपल था, जब नानी का घर गए तो तब हमने सबसे ज्यादा एंजॉय किया था। गर्मी का मतलब ही था आम का सीजन। नानी के घर आम ऐसे आते थे जैसे कोई फेस्टिवल हो, और फिर वो आइसक्रीम वाला या फिर वो कुल्फी वाला कौन सा फ्लेवर होना, और हम सब मिक्स कर देते थे। और घर आके मम्मी का डायलॉग, गला खराब हो जाएगा, और नानी का सपोर्ट, अरे बच्चे हैं खाने दे। दिन भर मिट्टी में खेलना, कपड़े गंदे करना, और किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ परफेक्शन नहीं सिर्फ हैप्पीनेस मैटर करती थी। आज लाइफ सॉर्टेड है, पर वो केयर फ्री वाली फीलिंग कहीं खो गई है। अगर मिल जाए ना तो प्लीज संभाल के रखना, और वक्त मिले तो फिर से एक बार नानी का घर जरूर जाके आना और बचपन की यादें ताजी करना। बाकी सुनते रहना
1: वो बातें, 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें वितार जी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।